बोला कोई गल कई गए थे लोग का मिथिला ले गले के मिथिल ले नदाय मिथिल लेते बेलें दगिन पुतिंग अल उल्लिंग पा रही दगिन पुतिंग अल उल्लिंग पा रही इम बेले बेले अपाई बाल बेले थी आज कई मो कुंदे अलन लोग दे आ रख रहे मरन दगिन पुतिंग अल उल्लिंग पा रही इन उल कोई ती लाई वाला इन ऐ उल्ले वाला उल मत मैं जिया जम रोक नुम दुआल नस कगे पहली नुम जो चाहे इन दुआल कोई ची खिलमा लिया नुम जिया रो करो वाला इन मिथिल देंग अर्रा आयलों इन मिथिल इंगिस पुलंगी थी दुओ दुओ सी जी असिन जलम बो असिन जलम बो बुद्ध दुआल में नहीं बुलो मत नम एल अलब एला नमय दो आईनी तेया वो वाल तेया को के जंग अल एलन अंग एना प्यावो नहीं है केंग का गिबत तेंजी तेर तेर नवस पेंज भी नस लेल एला इंगी अलंगी गिसी खिलमा ले करी नस जी इन दियो जियो याना इन दीन तबुं इंजा इन दुओ अल दुओ दो दो दो तो ले ना दो बत दो बार ना देंग उड़वाल बकोल दाई मरंग केला कोल दा जी देंग आ रजा नाला कोल दा बो उड़ोगे मरंग किल्मा आयलों इन ये नहीं किंग ऐसे कुआ के इनंग का डूंगर रंगवा नाइंग कुआ बकेले नमक कुंडे नमस उड़ा कावली थिया ना किंग का थे कि गल नमा हुआ ए अल से इंगल दो तुल्ले इंजा इनसे इंजा इनसे इंजनी इले से इल्ला जावी इनसे नुम्बर ने आमी इनसे इन्हें प्यावा दो इम्पिया दाके दोरा से इम्बा इन्हें प्यावा मरंग